0: बाजी तोर बाजा आ गए मुटीगंज के राजा।
1: ए बेटा, तुम्हारी हैसियत के डीजे वाले

गन है कोई माइकल आज जो हर कभी चंदक कर दे सकता है। दम है तो रोक ली, दम है तो रोक ली। हरिगोविंद बाबा हाईटेक, सामने से हट जाइए, अब मैं डीजे पे कदम रखने वाला हूँ।